आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

धुरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411 1133.

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। बोलने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि भाई कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, क्योंकि उड़ान भरने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें हम करेंगे, किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। और वक्त बिताने का सिलसिला जो है हम शुरू करने वाले हैं गानों के साथ, मगर उससे पहले आप अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर आप मैसेज कीजिए हमें, आपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो है जरूर जरूर जो है भेज दीजिए हमें। उसके साथ साथ अपने मोटिवेशनल मैसेजेस भी भेजिए, बताइए क्या हाल है और वीकेंड आ रहा है, क्या क्या करने का इरादा है, डिटेल में बताइएगा मुझे, क्योंकि जानने के लिए हम यहाँ पे तत्पर बैठे हैं भाई। आपके मैसेजेस के बिना मर जाने भाई, जल्दी जल्दी कर दीजिए मैसेज, क्योंकि आपके मैसेज से

0: एक मिनट के लिए मेरा मन किया कि मैं भी ऐसे शान की तरह गाऊं आई लव यू करके, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है, मैं बिगाड़ना नहीं चाहूंगा।
1: लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले।
0: चलिए अदनान सामी की आवाज में आज किक स्टार्ट करते हैं बिंदास मॉर्निंग्स को। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tepkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi guys, this is Abhar Shetty Khurana aur aap mujhe sun rahe ho Radio Olive.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेश। तो भाई स्टेशन क्लॉक में अभी 6:16 हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हमारे पास, जरा एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैसेज आया है वो है अबरार भाई का, उन्होंने जो है एक फोटो भेजा है मुझे और फोटो में बहुत ही प्यारा सा एक बच्चा ऐसे बना हुआ और गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, उन्होंने भी एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है गुड मॉर्निंग, सिचुएशन, टाइम एंड पीपल, दीज आर 3 थिंग्स दैट टीच बेटर लेसंस देन अ बुक। वाओ, बहुत ही बढ़िया बात कही है और बिल्कुल सही बात कही है। सिचुएशंस, हालात जो हैं, वक्त और जो लोग हैं हमारे आसपास, ये ऐसी चीजें हमें सिखा देते हैं जो शायद किसी किताब से हमें ना मिले। बिल्कुल सही बात कही, थैंक यू सो मच ये मैसेज भेजने के लिए मुझे। सिमिलरली अमित जी ने मैसेज किया है, अमित जी ने बोला है हेलो सुदेव गुड मॉर्निंग करके, जियो बिंदास लिखा है उन्होंने, थैंक यू सो मच जियो बिंदास, और आपको भी एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। उसके साथ साथ मुझे अनिल जी का मैसेज आया है, उन्होंने भी हेलो सुदेव गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और मुझे दीपक जी का भी मैसेज आया है, उन्होंने भी लिखा हैव अ ग्रेट डे सुदेव गुड मॉर्निंग करके, बहुत ही बढ़िया तरीके से गुड मॉर्निंग लिखा है। थैंक यू सो मच, आपको भी एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। तो भाई गानों के उस पार हम आएंगे एक सवाल लेकर, तो सवाल के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पे फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। कूल
1: सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: ring for the newly married, cute little bangle for the newborn? Arey yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. Phir Malabar Gold and Diamonds, golden summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाई फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सदैव। स्टेशन क्लॉक में अभी 6:31 हो रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास एक सवाल है ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में, तो चलिए शुरू करते हैं।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज।
0: ओके भाई, यहाँ पे चलिए एक बहुत ही बढ़िया सवाल लेकर हम आए हैं। सवाल देखिए बहुत सिंपल है, सवाल का जवाब आपको देना है। सवाल ये है कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट गोल किसने किया है। आप मुझे टीम और प्लेयर दोनों का नाम बताइए, ठीक है, दोनों का नाम बताइए। तो सवाल फिर से सुन लीजिएगा, वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट गोल किसने किया है, ये आपको मुझे बताना है। और तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी आप मुझे मैसेज कर दीजिए और बताइए सवाल का जवाब क्या है। फिलहाल यहाँ पे अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं उसका ही बनाना। Stay tuned, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सदैव। जियो बिंदास।

0: अलिफ पे स्टोरी ऑफ द डे दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज मेडिसिन नहीं होप है और डॉक्टर्स रोज ये लैंग्वेज बोलते हैं कभी स्टेथोस्कोप से तो कभी सर्जरी से और कभी सिर्फ एक स्माइल से इस डॉक्टर्स डे पर सैल्यूट उनको जो इलाज से पहले उम्मीद देते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स स्टोरी ऑफ द डे
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास Hey, can I have your number?
2: Why not? लिखो 10, 20, 30.
1: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से.
2: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, 20 फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में.
1: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए. सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड These smiles anytime. For more information, call 4411133.

बोल रहा हूँ कि प्लीज दांत का दर्द कम करा दो, ये दर्द सहा नहीं जाता। सारे दर्द हम सह सकते हैं भाई, मगर दांत का दर्द कुछ अलग ही दर्द होता है। मगर अगर ऐसे आप पूछोगे तो हड्डी टूटने का दर्द भी हम वैसे सह नहीं सकते। एक और दर्द है जो सहा नहीं जाता, अगर आपके टीम के खिलाफ कोई और टीम बहुत ही जल्दी गोल मार दे और वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट गोल हो जाए, वैसा दर्द भूलना भी आसान नहीं होता। उसी दर्द के बारे में एक सवाल हमने पूछा था, और सवाल मैंने पूछा था कि ऐसी कौन सी टीम है, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने जो है सबसे जल्दी गोल किया है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, सबसे फास्टेस्ट गोल किया है। तो हमारे पास थोड़े जवाब आए हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। वीएसआर मूर्ति जी ने मुझे मैसेज किया है, उन्होंने बोला है हकान सुकूर फ्रॉम टर्की, और उसके साथ साथ मुझे अर्श ने मैसेज किया है, अर्श ने भी बोला है हाई ब्रो, इन 2002 हकान सुकूर फ्रॉम टर्की स्कोर्ड इन 11 सेकंड्स लोके। तो इन दोनों ने जो है बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो इनके लिए बजाएंगी तालियां। तो भाई तालियों के बाद थोड़ा डिटेल हम बता देते हैं। तो ये जो है 2002 वर्ल्ड कप में हुआ था, जहां पे टर्की और साउथ कोरिया ने जो है एक मैच खेला था, 29 जून को ये मैच हुआ था। 11 सेकंड्स के अंदर अंदर उन्होंने जो है गोल स्कोर किया और अपना नाम जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से उन्होंने लिख दिया फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। और ये थर्ड प्लेस प्ले ऑफ मैच हो रहा था, इसमें इस मैच में जो है इन्होंने ये गोल स्कोर किया था। और इसमें टर्की के जो ओपोनेंट्स थे वो को होस्ट साउथ कोरिया थे, जिन्होंने ओपनिंग कॉइन टॉस जीता और इनिशियल किक ऑफ लिया, मगर सुकूर ने काफी जल्दी ही प्रेस किया, बॉल को इंटरसेप्ट किया और वहां से एडवांस करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से गोलकीपर को पार करते हुए बॉल जो है गोल तक पहुंचा दिया, और टर्की ने 3-2 से मैच जीता और थर्ड प्लेस सिक्योर किया। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम, जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई चलिए यहाँ पे हाल देखते हैं मौसम का, क्या मौसमिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी का टेम्परेचर जो है वो देखने को मिल रहा है 35 डिग्री सेल्सियस का, और हवाएं जो है 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा मुझे पिघला तो नहीं देगी। भाई सख्त लौंडे हैं, पिघलते नहीं है, बट हवा भी थोड़ी गर्म है तो कह नहीं सकते ऐसे। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि भाई टेम्परेचर जो है आज का हाईएस्ट जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस, लोवेस्ट जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। गर्मी है बाहर तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी सनी डे दिखा रहा है। और नज़ारे दिखाइए यार मुझे बाहर, क्या क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस रास्ते पर हैं आप बताइए मुझे, मैसेज कीजिए 3311063 पर मैसेज करके। फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to...
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे जो है मेरे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं। मुझे अनिल जी ने मुझे मैसेज किया है, उसके साथ साथ दीपक जी ने मैसेज किया है, और मुझे रश्मिका जी ने मैसेज किया है, और पलक का मैसेज आया है, और अश्विनी जी का मैसेज आया है, उसके साथ साथ मुझे चंद्रशेखर जी का मैसेज भी आया है। इन सब ने जो है कुछ फोटोज मुझे भेजे हैं, और उसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया फोटोज भेजे यार, थैंक यू सो मच। मतलब मजा आ गया देख के, थैंक यू सो मच। आपने जो है मेरे इस छोटे से रिक्वेस्ट को पूरा किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी खुशी में काम करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए

0: listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas. Hey, can I have your number?
1: Why not? Likho 10, 20, 30.
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से.
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में.
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए. सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर.
2: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर.
3: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Nasim Medical Center, Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Dr. On Air. Brought to you by Nasim Healthcare.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
5: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहां पे वक्त हो चुका है फिटनेस के बारे में बात करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो हिट है। में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो है नाक से सांस लेना। आप सोच रहे होंगे वाह भाई वाह सुदेव, क्या नई बात कर दी, बिल्कुल बढ़िया बात, ये तो पता ही नहीं था हमें करके, सोच रहे होंगे ना आप। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। नेजल ब्रीदिंग ओरल हेल्थ को कैसे सपोर्ट करती है, ये है आज का टॉपिक, ठीक है। रिसर्च ये दिखाती है कि नाक से सांस लेना सिर्फ लंग्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारे ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। जब हम नॉर्मल कंडीशंस में नाक से सांस लेते हैं तो हमारा मुंह जो है, माउथ जो है, वो नेचुरली क्लोज रहता है और सलाइवा का लेवल जो है मेंटेन रहता है। और सलाइवा का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीथ को नेचुरली क्लीन करने में हेल्प करता है, फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को वॉश करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, टूथ एनामल को मिनरल्स देकर प्रोटेक्ट तक करता है। लेकिन अगर कोई पर्सन क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग करता है, जैसे ब्लॉक्ड नोज, एलर्जीज या स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से माउथ जो है ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो ड्राई माउथ में जो है सलाइवा कम हो जाएगा, जिससे कैविटी का रिस्क बढ़ता है, गम डिसीज डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं और बैड ब्रेथ भी हो सकती है। अगर माउथ ब्रीदिंग सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान हो तो ये नॉर्मल है, समझ में आता है, लेकिन दिन भर या सोते वक्त रेगुलरली माउथ ब्रीदिंग होती है तो उसका अंडरलाइंग कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, नाक से सांस लीजिए, सांस छोड़िए और कहिए जियो बिंदास।
2: King Khan, yo, honey singer.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास।
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुना है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
2: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस। कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। सिंपल, इफेक्टिव, इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063।
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। कतर करियर डेवलपमेंट सेंटर ने हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अपने फ्लैगशिप जॉब शैडोइंग प्रोग्राम माई करियर माई फ्यूचर 2026 का 8th एडिशन जो है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ये प्रोग्राम 2nd से 6 अगस्त 2026 तक चलेगा और इसमें रजिस्टर करने का लास्ट डेट जो है वो है 30th जुलाई 2026। इस प्रोग्राम को कतर की बड़ी मिनिस्ट्रीज जैसे कि एजुकेशन, लेबर, स्पोर्ट्स एंड यूथ और सिविल सर्विस ब्यूरो का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है ताकि यंग जनरेशन को कल के मार्केट के लिए रेडी किया जा सके। और स्टूडेंट्स को ओरिएंटेशन के बाद 18 से ज्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भेजा जाएगा जहां वो रियल वर्ल्ड जॉब एनवायरमेंट्स को देखेंगे और करियर पाथवेज को एक्सप्लोर करेंगे। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो QCDC की ऑफिशियल वेबसाइट www.qcdc.org.qa पर जाकर अपनी पसंद के सेक्टर के मुताबिक रजिस्टर कर सकते हैं। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: एंटरटेनमेंट की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस, सेव मोर ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Hey, can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30।
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 June 29 से।
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में।
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए। सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुना है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन।

0: फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, this is A.R. Rahman.
4: A.R. Rahman.
3: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
4: Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: I'm in number one. Radio Olive. Abu Hogi. Abu Hogi. Bindas Morning.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
7: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
8: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:17 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए भाई हम जरा बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: Yes, यहाँ पे चलिए बात करते हैं हम जरा matches के बारे में। तो भाई matches हुए थे इंग्लैंड और कांगो के बीच में, जिसमें एक टाइम में लगा कि भाई कांगो जो है इंग्लैंड को पछाड़ देगी, मगर हैरी केन ने जो खेला कल भाई मानना पड़ेगा, स्पेशली सेकेंड हाफ में जो लेजेंडरी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया उससे उन्होंने इंग्लैंड को जो है राउंड ऑफ 16 तक पहुंचा दिया। कांगो बाहर हो गई है। बेल्जियम और सेनेगल का गेम काफी बढ़िया गेम, मतलब क्या बताऊं मैं भाई, एक पॉइंट में ऐसा लगा कि सेनेगल जो है बेल्जियम को बाहर कर ही देगा। 80th मिनट तक जो है ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से सेनेगल ने जो है गेम खेला, बेल्जियम ने भी छोड़ा नहीं, मगर लास्ट में जाके भाई गेम पूरा पलट गया और एक्स्ट्रा टाइम के लास्ट मिनट में एक पेनल्टी भी मिल गया उन्हें, जिसे 3-2 से उन्होंने गेम जीत लिया। उसके बाद राउंड ऑफ 32 का एक और मैच हुआ था आज, जो था यूएसए और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच में, जिसे 2-0 से यूएसए ने जीत लिया और वो भी राउंड ऑफ 16 की ओर चले गए हैं। और आज के मैचेस के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, जरा गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। भाई स्टेशन क्लॉक में 8:30 होने वाले हैं और यहां पे हम बात करने वाले हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: भाई यहाँ पे आज मैच होने वाला है स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच में, जिसमें क्लियर फेवरेट्स जो है वो स्पेन है। सब चाहते हैं कि स्पेन जीते और मुझे भी लगता है स्पेन जीतेगी, मगर पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अच्छा खेला था तो थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, मगर आई थिंक स्पेन इन दी एंड जो है जीत जाएगी। मगर यार कह नहीं सकते कम्प्लीटली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा टाइम जो है मैच स्कोर जो है लेवल रहता है और पेनल्टी में एक दूसरी टीम जो है जीत जाती है, ठीक है, जिससे हमें लगता है कि ये जीतेगी, ऑपोजिट वाली टीम जीत जाती है। होता है कई बार, जर्मनी के साथ हुआ है तो हम कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। मगर 2 रात के पोर्चुगल और क्रोएशिया का मैच है जिसके लिए बेसब्री से हर कोई इंतजार कर रहा है और बहुत ही क्रूशल मैच है ये, दोनों टीम के लिए क्रूशल मैच है। पोर्चुगल फैंस के लिए, रोनाल्डो फैंस के लिए बहुत क्रूशल मैच है, क्योंकि भाई यहाँ पे पता चलेगा कि ये वर्ल्ड कप रोनाल्डो के लिए है या नहीं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। हर कोई जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो है टाइम हटा के रख रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुआ भी कर रहा है कोई। मैं जानता हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स वो दुआ कर रहे हैं कि भाई यार कैसे ना कैसे रोनाल्डो जीत जाए यार, ये थोड़ा बुरा लगेगा अगर क्रोएशिया हार गई, क्योंकि लुका मॉड्रिच भी है उसमें, मगर फिर भी यार कैसे ना कैसे करके, बट देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल ही काम करते हैं हम और हो गाना सुनते हैं रॉकस्टार मूवी से। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, जियो बिंदास।

0: Story of the Day.
1: Story of the Day.
2: दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज मेडिसिन नहीं, होप है। और डॉक्टर्स रोज ये लैंग्वेज बोलते हैं, कभी स्टेथोस्कोप से, तो कभी सर्जरी से, और कभी सिर्फ एक स्माइल से। इस डॉक्टर्स डे पर सैल्यूट उनको जो इलाज से पहले उम्मीद देते हैं। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
3: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेश। तो भाई चलिए हम जरा देखते हैं कि क्या क्या चीजें किए जा सकते हैं वीकेंड पे। बहुत सारे इवेंट्स जो है चल रहे हैं, समर कैंप्स जो है कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर हम बात करें कतर स्कूलेस्ट समर कैंप फॉर किड्स की, तो उनका एक छोटा सा लिस्ट जो है अपने पास है। हम थोड़ा डिटेल में जो है आपको बताना चाहेंगे एक एक करके। और समर कैंप से मुझे याद आया, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारतें करता था, मेरी मम्मी मुझे एक समर कैंप में लेके गई थी छोड़ने के लिए। वहाँ पे दोस्त के दो तीन ऐसे क्लासेस के लिए तुम्हें ज्वाइन करना होता है, तो पॉटरी एक क्लास था, मुझे तो वही याद है क्योंकि वहीं पे मैं जाता था, बाकी दो तो मैं गया भी नहीं तो मुझे याद भी नहीं कौन से थे। तो उस जमाने से हम क्लास बंक करते थे, मगर मैं बताऊंगा बच्चों को कि प्लीज़ डोंट बी लाइक मी, अब ऐसे स्किल सीखिए, अच्छा रहेगा, बाद में आपको जो है मौत मौका मिलेगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीएसजी एकेडमी कतर के बारे में। एक फन फुटबॉल समर कैंप होगा पीएसजी एकेडमी कतर में, और यहाँ पे बच्चे जो सीख सकते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। 28 जून से लेके 27 अगस्त तक जो है ये कैंप चलने वाला है। दुहेल में, अलसद में और अलवाब में जो है ये कैंप चलेगा, और 4 साल से लेके 17 साल के बच्चों के लिए ये जो है ये कैंप रहेगा। आप इसके डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, पीएसजी एकेडमी कतर का जो ऑफिशियल हैंडल है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां जाके आप जो है बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ और समर कैंप्स की, तो क्वेस्ट समर कैंप के बारे में हम बात करना चाहेंगे। यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से जो है बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे एक कैंप में 4 दुनिया और अनलिमिटेड एडवेंचर्स। तो इसमें राइड्स एंड अट्रैक्शंस हैं, इंडोर स्कीइंग है, इंडोर स्काई डाइविंग है, पैडल सेशंस हैं, रोबोटिक वर्कशॉप्स हैं, साइंस एंड रिसर्च बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, रोलर स्केटिंग है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं 6 से 12 साल के बच्चों के लिए। और आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं इनके वेबसाइट में, और देख सकते हैं कि क्या है कैसा है डिटेल, बाकी सब उनसे ले सकते हैं। तो ये सारे कुछ थोड़े स्पोर्ट्स रिलेटेड कैंप्स हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे ईवो स्पोर्ट्स कतर के बारे में, जो मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए जो है ऐसे कैंप्स रख रहा है। 5 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक दोहा कॉलेज अलवजबा में फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, टेनिस, जिमनास्टिक्स और बाकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए 4 से लेकर 11 साल के बच्चे अटेंड कर सकते हैं। और आप ईवो स्पोर्ट्स कतर के हैंडल को चेकआउट कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ना चाहेंगे और प्ले करना चाहेंगे फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: little bangle for the newborn?
1: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting contention. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर इज मोर. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411133।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई, कतर टॉय फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है। 31 जुलाई तक जो है ये टॉय फेस्टिवल चलेगा। दोहा एक्सिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में जो है टॉय फेस्टिवल चल रहा है। वीकडेज में 2 PM to 10 PM है टाइमिंग, और वीकेंड्स में 2 PM to 11 PM है टाइमिंग। तो आप जरूर जा सकते हैं, उसके वेबसाइट में जाके भी बाकी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वीकेंड के टाइम में क्या क्या चीजें कर सकते हैं एंजॉय करने के लिए, उन सबके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ी देर पहले भी हमने क्या था, अभी भी करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे विशाल मिश्रा की आवाज में बंदर मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
1: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: the 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेश। भाई मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा आपको कि देखिए वीकेंड आ रहा है, एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो कुछ चीजों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बट अब मैं बताना चाहूंगा दोहा समर ट्रेड एंड शॉपिंग एक्सिबिशन के बारे में। ठीक है, जो चल रहा है दोहा एक्सिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, 23 जून ने शुरू हो गया था, 4 जुलाई तक चलेगा, यानी कि कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर आप नहीं गए तो जरूर जाइए। और सैटरडे टू थर्सडे का टाइमिंग रहता है 10 AM to 10 PM, फ्राइडे 3 PM to 10 PM, फ्री एंट्री है, बेझिझक जाइए। और अगर आप परफ्यूम के शौकीन हैं तो भाई तीबल हज़म में जाइए, जिसका 13th एडिशन चल रहा है अल हज़म मॉल मरखिया में। 4 जुलाई तक ये भी बाकी है, मतलब कुछ ही दिन बचे हैं। और सैटरडे टू थर्सडे जो है 10 AM to 11 PM इसका एंट्री होता है टाइमिंग का, फ्राइडे 2 PM to 11 PM है, फ्री एंट्री है, ज़रूर जाइएगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके के परफ्यूम्स जो है आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसके साथ साथ 31 अगस्त तक चलने वाले मॉर्निंग जॉगिंग सेशन के बारे में हम बताना चाहेंगे, जो दोहा फेस्टिवल सिटी में हो रहा है। 31 अगस्त तक जो है ये चलेगा 7:30 AM to 9 AM तक। इस समर में अपने फिटनेस के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, और फ्री एंट्री है, रजिस्ट्रेशन नीडेड है, तो आप जरूर उनके वेबसाइट पर जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा वाला गाना प्ले करते हैं, क्योंकि ये गाना सुन के सही में मजा आ जाएगा बहुत लोगों को। शंकर महादेवन और उदित जी की आवाज में सर सर सर सर सर सर सर, बहुत ही बढ़िया गाना है। इस गाने को एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हैला जादू।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411133।

तो भाई टाटा बाय बाय करते हुए निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है 9:48 हो रहे हैं और थोड़ी देर में 10 जाएंगे। आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, वक्त बिताने के लिए कशिश आ जाएगी, तो फिर कशिश को ये जगह हम जरा खाली करके दे देते हैं और आपसे गुफ्तगू करेंगे हम संडे सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, वीकेंड में एंजॉय करना, खूब खूब मस्ती करना, खुश रहना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। तो जाते जाते जाते है जवानी तो इश्क होना है मूवी का एक गाना हम प्ले करना चाहेंगे। और भाई वीकेंड आ रहा है तो माइंड तो ब्लो हो ही जाएगा। ये गाना वैसे मैंने अपने लिए नहीं रखा था, इत्तेफाक था बस। बट एनीवे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, 4 घंटे हम जुड़े रहे। अब आप एंजॉय कीजिए, दिन को बढ़िया तरीके से स्पेंड कीजिए। मैं जरा निकलता हूँ, टाटा बाय बाय करता हूँ और कहता हूँ जियो बिंदास।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
2: होम्स आर अस। वी कंप्लीट योर होम।

हर सानू की आवाज में ये ट्रैक एंजॉय किया आपने 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखिए यार, ये तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि रात जरा थम थम के गुजर, क्योंकि आज की ही रात होती है जो कि सबसे ज्यादा फन होती है, जिसमें बहुत मजा आता है और ऐसा लगता है कि बस आज की रात ना बीते, कल वीकेंड जो है वो ना आए। मतलब ऐसा है कि आज की रात हम इंजॉय कर सकते हैं ना, हम देर से सो सकते हैं, रात तक मूवी देख सकते हैं, ताकि कल जो है कोई टेंशन ही ना हो। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज की रात को गुजरना नहीं चाहिए। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ क्यों मस्त नहीं होगी यार, आज वीकेंड है, आज से जो है हमारा फन, हमारी मस्ती जो है वो शुरू होने वाली है। देखो वैसे तो हम पूरे वीक जो है फन का लेवल जो है एकदम हाई रखते हैं, मस्ती जो है एकदम फुल ऑन करते हैं, आप और मैं मिलके वाइब करते हैं, लेकिन देखो वीकेंड की बात जो है वो अलग होती है। कल भी जो है मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी, ऐसा नहीं है कि कल जो है फ्राइडे को मैं ऐसा बोल दूंगी यार फ्राइडे है मैं तो इंजॉय करूंगी, आप लोगों से मिलूंगी नहीं। आप लोगों से मिले बिना मेरा दिन बीतता ही नहीं है ना, इसलिए कल टेक टॉक पे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लाइफ मस्त है, शो जो है वो शुरू कर चुके हैं। सो एकदम बढ़िया वाले मेरे वाइब वाले गाने के साथ हम शुरुआत करेंगे। खुद को एक गाना डेडिकेट कर देती हूँ क्योंकि और कोई तो करता नहीं है। तो बस इसीलिए कॉकटेल 2 मूवी से माशू का गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, बाकी वीकेंड की वाइब और बढ़िया तरीके से सेट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में शुरुआत कर दे माशू का गाने के साथ। तो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कशिश के साथ लाइफ मस्त है, पर कहते रहो जियो बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया है, 10:13 हो रहे हैं इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में, यानी 10:13. स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जी बिंदास.
2: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जी बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: एकदम ही रोमांटिक हो गई यार अचानक से प्लेलिस्ट। क्यों, क्या बात है, आज हवा में इतना रोमांस क्यों घुला हुआ है? कुछ स्पेशल है क्या आज? वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड आज ना जब हम हमारे जो हमारा स्टे है, हमारा अकोमोडेशन है, उससे जब हम ऑफिस आ रहे थे सब लोग साथ में, तब हम यही बात कर रहे थे कि ओ माय गॉड टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ गया है। कार के अंदर, ऑफिस के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर, पार्क के अंदर, मॉल के अंदर रहो तब तक ठीक लगता है, जैसे रोड्स पे निकलो ना तो थोड़ा जो है मुझे घर की याद आने लग जाती है, भोपाल की याद आने लग जाती है। तो मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने ये कहा कि कशिश अभी रुको यार, अभी नेक्स्ट मंथ जो है बहुत मजा आएगा। मैंने बोला नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, क्यों मजा आएगा? क्या मौसम बहुत ज्यादा प्लीजेंट होने वाला है? क्या बहुत ही अमेजिंग मौसम होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि अभी तो आपने ह्यूमिडिटी नहीं देखी है, कल जो है मतलब अब कल नहीं मतलब आने वाले जो टाइम है उसमें आप ह्यूमिडिटी भी देखोगे। अलग लेवल पे डरा दिया है मुझे। खैर बात जो है आज की टेम्परेचर की कर लेते हैं। सो इस वक्त करंट टेम्परेचर दोहा की अगर मैं बात करूँ तो 41 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। ह्यूमिडिटी जो है अभी आज तो थोड़ी कम रहेगी लेकिन कल तक बढ़ने का जो है फुल आसार है। सो देखिए इस हीट को बीट करने का मुझे लगता है एक ही तरीका है, वो है कूल वाली बीट सुनना। इसीलिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, इस गाने को एंजॉय कीजिए। बाकी एक मैनिफेस्टेशन जो है वो हम सब मिलकर थोड़ी सी देर में करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
1: कूल सॉन्ग
0: खोया खोया चांद रहता है गाना एंजॉय कीजिए आपकी कसूस के साथ कहते हुए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

अब मैं भी तो आप लोगों से यही कह रही हूँ ना कि आप लोगों का दिल थोड़ी देर के लिए मेरे पास रहने दीजिए, 3 घंटे की ही तो बात है। हंगामा मूवी का ये ट्रैक आपने इंजॉय किया अलका याग्निक जी की आवाज में आपके रेडियो सेट्स पर 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मैं बार बार कहती हूँ कि शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, एंड लाइफ सच में मस्त है। लेकिन अलाउद्दीन साहब ने जो है एक सवाल उठाया है, उन्होंने मुझसे पूछा है व्हाट्सएप पे कि कशिश आप कैसे कह सकते हो कि लाइफ मस्त है। देखिए अलाउद्दीन जी, मैं जानती हूँ कि हम सब अपनी लाइफ में जो है किसी न किसी चीज़ से जो है जूझ रहे हैं, एंड हमें बहुत मन करता है ये कहने का कि नहीं लाइफ अच्छी नहीं है, लाइफ ठीक नहीं है, लाइफ मस्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे शो पर, मेरे इस शो पर, मेरे साथ, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सब अपनी वो तकलीफें जो हैं उन्हें साइड में रख कर मेरे साथ थोड़ा सा इंजॉय कर रही। मैं भी अपनी शायद कुछ उन तकलीफ़ों को घर पर छोड़कर आती हूँ या इस स्टूडियो के बाहर छोड़कर आती हूँ, सारे स्ट्रेस को बाहर छोड़कर आती हूँ ताकि आप लोगों के साथ थोड़ी सी मस्ती जो है वो कर सकूँ, थोड़ा सा फन कर सकूँ, एंड आप भी ये कह सकें कि लाइफ मस्त है। बिल्कुल उसी तरह जब हमारा कोई रिलेटिव या हमारा कोई करीबी कहता है ना कि और क्या चल रहा है, कैसा है सब, कैसी है लाइफ, तो आप कहते हो ना हाँ लाइफ मस्त है। तो भले ही लाइफ मस्त हो या ना हो, कुछ सेकंड के लिए आप ये यकीन कर लेते हो खुद भी कि हाँ लाइफ एक्चुअल में मस्त है। बस वही कुछ सेकंड से बढ़कर कुछ मिनट, कुछ घंटे मैं आपको देना चाहती हूँ जहां पर आप कह सकें कि हाँ कसूस लाइफ मस्त है। अमेजिंग वाले गाने, अमेजिंग लाइट हार्टेड कॉन्टेंट मैं आपके लिए लाती हूँ जिससे आपके ना दिमाग पर ज्यादा जोर ना पड़े। तो देखो बस इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी देर में हम स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है फन तरीके से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी शाहरुख खान की बात हम पहले करेंगे। देखिए शाहरुख खान से पहले कोई नहीं, तो इसलिए शाहरुख खान की मैं बात करूंगी। सो काफी सारे फैन पेजेस हैं जिन्होंने एक मूवी का पोस्टर जो है वो इंटरनेट पे सरफेस करना शुरू कर दिया है, और उस मूवी का नाम है कभी खुशी कभी गम। मुझे ऐसा लगता है कि हम रेडियो ऑलिव पर कभी खुशी कभी गम की बहुत बातें करते हैं। मतलब अगर एक स्टार नाम का चैनल है, उसके अलावा जो है अगर कहीं पर कभी खुशी कभी गम जो है सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है तो वो है रेडियो ऑलिव। मैं और सुदेव भी काफी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि कभी खुशी कभी गम का अगर शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो K3G क्यों बनाया, 3KG क्यों नहीं बनाया। एक फेक पोस्टर जो है वो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है जहां पर सेकेंड पार्ट की बात हो रही है, यानी कभी खुशी कभी गम के सेकेंड पार्ट की बात की जा रही है। एंड वहां पर शाहरुख खान, काजोल, करीना, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, जया जी, इनके साथ जो एक अगली जनरेशन है यानी राहुल के बेटे की जो जनरेशन है वो भी दिखाई दे रही है। एंड उसमें हमें दिखाई कौन दे रहा है, आर्यन खान एंड अनीत पड्डा, सैयारा वाली, ठीक है उनका नाम मुझे बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो है दिखाई दे रहा है। सो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या कभी खुशी कभी गम का सेकेंड पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि कई बार ना ऐसा लगता है मुझे सीक्वल्स ना ओरिजिनल मूवी को खराब कर देते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है? 3311063 इज द नंबर, इस पर जो है आप मुझे मैसेज करके ये बता सकते हैं कि अगर आप मतलब आर्यन खान नहीं तो और कौन, उसकी जगह और कौन है जो शाहरुख खान के बेटे का रोल जो है वो बढ़िया तरीके से प्ले कर सकता है एंड कभी खुशी कभी गम को रुइन नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय करो, बाकी आकर जो है बातचीत जारी रखेंगे। एंड देखिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, कहते रहना है लाइफ मस्त है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रेडियो ऑलिव के साथ जियो बिंदास।

दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज मेडिसिन नहीं, होप है। और डॉक्टर्स रोज ये लैंग्वेज बोलते हैं, कभी स्टेथोस्कोप से तो कभी सर्जरी से, और कभी सिर्फ एक स्माइल से। इस डॉक्टर्स डे पर सैल्यूट उनको जो इलाज से पहले उम्मीद देते हैं। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स।

आपको पता है इस मूवी का नाम थैंक गॉड क्यों रखा गया था? क्योंकि इस मूवी के खत्म होने के बाद सबने कहा थैंक गॉड ये मूवी खत्म हो गई। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा इस मूवी में मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगा। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ मस्त है पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे, अलाउद्दीन जी ने ये कहा था कि कशिश आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लाइफ मस्त है, और फिर मैंने उस पर इतना बड़ा इमोशनल आपको पूरा एक मोनोलॉग दे दिया। उसके बाद उनका मैसेज आया कि कशिश मैं तो ये कह रहा था कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लाइफ सिर्फ मस्त है, आपके साथ तो लाइफ डबल ट्रिपल मस्त है, और जब आप होते हो तो और मजा आ जाता है। थैंक यू फॉर द तारीफ। आई डोंट नो ये आप सच में पहले ही कहना चाह रहे थे या मेरे उस मोनोलॉग के बाद आपका हृदय परिवर्तन हो गया। वैसे बात हम कर रहे थे स्ट्रेस को दूर भगाने की। सो वैसे तो रोज बहुत फनी फनी तरीके मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं एक टोटली साइंटिफिक तरीका जो है आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कहने का। हाँ जी, एक ताई ची वॉकिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसे आप करके आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कम कर सकते हो। एंड कॉर्टिसोल लेवल का मतलब स्ट्रेस कम, फैट कम, एंड एकदम बढ़िया मूड, और सच में लाइफ मस्त। सो ताई ची वॉकिंग जो है एक स्लो मोशन मूवमेंट प्रैक्टिस होती है जो एक मूविंग मेडिटेशन की तरह है, एंड इससे आपकी बैकबोन जो है उसको काफ़ी फायदा होता है, आपकी जॉइंट्स को काफ़ी जो है फायदा होता है, एंड इससे आपका वेट जो है वो भी मैनेज रहता है। सो इससे जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंड साथ में एक बेटर शेप जो है वो मेंटेन करने के लिए। सो यार देरी किस बात की है, ताई ची वॉकिंग जल्दी से अपने AI पे, यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी सर्च करो, उसका एक सही तरीका जो है वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा तो देखो यार AI की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, सब कुछ तो मैं नहीं बता सकती ना रेडियो पे। फिलहाल ये जरूर बता सकती हूँ कि आगे आपके जो आने वाले 2-3 घंटे हैं वो बहुत ही अमेजिंग जाने वाले हैं, क्योंकि आपकी कशिश जो है वो आपके साथ रेडियो पर लाइव रहने वाली है। सो एक अमेजिंग फ्रेश वाला गाना, ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है ये सुनते हैं, एंड साथ में ये जवानी है तो इश्क होना है का टाइटल ट्रैक जो है ये मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास। Radio on

0: जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:09, दैट इज 11:09. स्टे ट्यून्ड रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
3: जियो बिंदास.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: कुमार सानू जी और साधना सरगम जी की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड आज बहुत ही स्पेशल चीज पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए वीकेंड आए और आप अगर अपने पार्टनर के साथ अपना बहुत मेजर टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं तो कुछ चीजें जो है डिस्कस करनी बहुत जरूरी होती है। और स्पेशली अगर हम बात करें वीकेंड्स की, तो मतलब काम वाम जो है वो डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना अपना टाइम लेना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक कपल ने क्या किया पता है, तो जो लड़का है वो काफी गेमर टाइप का है, उन्हें गेम्स खेलना काफी पसंद है एंड अभी काफी सारे गेम्स जो है वो लॉन्च भी हुए हैं। सो उसके चलते उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया है जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ का साइन लिया है और ये कहा है कि ये आप जो है मुझे गेम खेलने से नहीं रोकेंगी, मैं एटलीस्ट दिन में जितना चाहूं एटलीस्ट 6 या 7 आवर्स 8 आवर्स जो है गेम खेल सकता हूं और आप मुझे नहीं रोकेंगी, एंड स्पेशली वीकेंड्स पे आप मुझसे लड़ाई नहीं करेंगी कि तुम पूरे टाइम गेम खेलती रहती हो। सो वाइफ को जो है साइन करना पड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार 8-9 घंटे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा है ना गेम के लिए। आप बताइए, अगर आपको आपके रिलेशनशिप अग्रीमेंट में कोई ऐसा क्लॉज डालना हो या कोई ऐसी स्पेशल रिक्वेस्ट अपने पार्टनर से करनी हो जिस पे आप चाहे कि वो साइन करे, सो वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी एंड आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर को अग्रीमेंट पे लिख के देना कि यार देखो ये वाला काम मैं करूंगा, ये वाला काम तुम करना, इस काम से मुझे मत रोकना, इस काम से मैं नहीं रोकूंगा, बताइए मुझे 3311063 पर। आप लोगों की अक्सर कंप्लेन होती है कि कशिश बहुत जल्दी नंबर बोल देती हो, तो अब धीरे से सुन लो 3311063। सो इस स्कूल वाली न्यूज के बाद एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो तो बनता है, सो जल्दी से ये गाना जो है इंजॉय करके वापस आई, उसके बाद मुझे बताइए कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हैं एक रिलेशनशिप अग्रीमेंट में मेंशन की जाए।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
0: ये गाना एंजॉय कीजिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ

मोहब्बत मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। और देखिए यार, शाहरुख खान का ना एक गाना काफी है हमें ये जो है हमारे दिन को एक बढ़िया शुरुआत देने के लिए, एक बढ़िया वाइब में लेकर आने के लिए। सो थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपको रिलेशनशिप में एक अग्रीमेंट करने का मौका मिले जहां पर आप अपने पार्टनर से साइन करवा सकते हो कि यार ये काम जो है वो तुम्हें करने पड़ेंगे या ये काम तुम मुझे करने के लिए अलाउ करोगे, सो वो कौन सी चीजें हो सकती हैं एक फन नोट पर। सो देखो, शाहरुख खान का गाना सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं कभी भी अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ जो है कोई अग्रीमेंट बनाऊंगी, सो उसमें सबसे पहली चीज तो यही मेंशन करूंगी कि आपको मेरे साथ बैठ के शाहरुख खान की मूवीज देखनी पड़ेगी, चाहे मैं कितनी भी बार रिपीट पर वो मूवीज देख रही हूँ। जैसे चेन्नई एक्सप्रेस जो है मैं अभी तक आई थिंक 34 टाइम्स देख चुकी हूँ, एंड अभी भी मैं आप लगा देंगे तो मैं फिर से देख लूंगी। कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, DDLJ, ये सारी वो मूवीज हैं जो मैं रिपीट पे देखती हूँ। तो अगर आप जो है एक अग्रीमेंट साइन कर दें जिसपे आपने ये लिखा हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ बैठ के शाहरुख खान की सारी मूवीज सारे गाने इन्जॉय करूंगा, तो फिर क्यों नहीं। वैसे और अगर मुझे ऐसे क्लॉज डालने पड़े अग्रीमेंट में, तो मैं ये डालूंगी कि मैं कोई भी रील भेजूं तो उस पे जो है सबसे पहले आपको रिएक्ट करना है। एक भी रील बिना रिएक्शन के नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए चाय जो है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बना भी सकती हूँ और मैं पीने की भी बहुत शौकीन हूँ, लेकिन पहली चाय सुबह की अगर मुझे मतलब बनानी ना पड़े, मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। सो बस एक ये अग्रीमेंट भी मैं ऐड करूंगी, पूरा दिन मैं चाय बना के पिलाने को रेडी हूँ, लेकिन सुबह की पहली चाय मुझे आप बना के देंगे, ये अग्रीमेंट में मैं डाल सकती हूँ। खैर, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने अलग अलग टाइप के अग्रीमेंट के क्लॉज मुझे बताए। इकबाल जी का जो है वो ये कहना है कि मेरी वाइफ जो है जब मैं टॉवल या अपने कपड़े इधर उधर रख देता हूँ तो उसे काफ़ी गुस्सा हो जाता है, तो मैं तो ये अग्रीमेंट जो है लिखना चाहूँगा कि मैं अपने कपड़े और टॉवल अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इकबाल जी, आपकी वाइफ पहले आपसे अग्रीमेंट साइन करवाएंगी कि गीला टॉवल बेड पर नहीं रखना है। और मोहम्मद इमरान जी का मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मैं ये कराना चाहता हूँ अग्रीमेंट अपनी वाइफ से कि बच्चों का होमवर्क जो है वो वही कराएगी, क्योंकि मैं ऑफिस से थक के जाता हूँ एंड बच्चों का होमवर्क कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे डाल दी जाती है। देखिए, ये सब तो खैर मैरिड लाइफ के अपने अपने पार्ट है, सब अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई फनी क्लॉज ऐड करते रहते हैं। वैसे थोड़ी देर पहले मुझे ना किसी ने मैसेज किया था, आई थिंक फैजान अहमद जी ने मुझे मैसेज किया था कि एक जो गाना है वो प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिए, कैसा ये इश्क है। सो बस आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, कुछ लोगों के ही फेवरेट वो वाले गाने, फरमाइश वाले गाने जो है वो हम प्ले करते हैं। सो इश्क रिस्क वाला गाना मेरी ब्रदर की दुल्हन से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को आप इंजॉय कीजिए। बाकी थोड़ी सी देर में आकर मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करने वाली हूँ, क्योंकि वीकेंड जो है वो आ चुका है, सो कुछ तो देखना पड़ेगा ना बैठ के। तो आइए गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर मूवी के बारे में बताती हूँ आपको। राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये ट्रैक एंजॉय कीजिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जी उबदास।

0: देखिए डॉक्टर जी मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त चले आई हूँ. अब देखिए यार, वादे के अनुसार आपको जो है वक्त हो गया है एक मूवी रिकमेंड करने का जिसे आप इस वीकेंड पर एंजॉय कर सकें और कह सकें कि यार कशिश सच में तुम्हारी वजह से ना लाइफ थोड़ी ज्यादा मस्त जो है वो फील होने लग जाती है. सो देखिए, जो आज मैं मूवी आपको रिकमेंड करने वाली हूँ ये कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसे बहुत एक आर्टिस्टिक मूवी कहा जा सके, लेकिन हम सबके फेवरेट क्रिएटर की अगर मैं बात करूँ, इम्तियाज अली जी की ये मूवी है, सबसे पहली मूवी है. सोचा ना था इस मूवी का नाम है. 2005 में ये मूवी रिलीज हुई थी. ये एक अंडररेटेड जेम है. ये डायरेक्टर इम्तियाज अली की डेब्यू फिल्म थी जिसमें अभय देओल और आयशा टाकिया ने लीड रोल जो है वो प्ले किया था. ये मूवी एक जो है ना अरेंज मैरिज सेटअप के आसपास घूमती है एंड कहीं ना कहीं एक बहुत ही रिलेटेबल सी स्टोरी लगती है. केमिस्ट्री आयशा टाकिया और अभय देओल दोनों की बहुत अच्छी है. डायलॉग्स बहुत फ्रेश है एंड आपको ना एकदम ऐसा फील नहीं होगा कि यार कुछ बहुत ही बोरिंग सा आप देख रहे हो. सो आप जो है ये मूवी बिल्कुल देख सकते हो. मैं इसे 4 stars दूंगी 5 में से. सो ये अमेजिंग वाली मूवी जो है आप एंजॉय करो. फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनने का वक्त हो गया. इसे एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास.
1: रेडियो

लकी अली की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफर में हूँ आपकी कशिश शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ एंड मोस्ट अवेटेड सेगमेंट फैशन वाले सेगमेंट की बारी आ चुकी है जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बॉटम्स की। हाँ जी, मतलब समझ नहीं आता है ना कि जीन्स पहना जाए, स्कर्ट पहना जाए, ट्राउजर्स पहनी जाए, ऊपर से इतनी गर्मी है कि आउटफिट्स जो है उन्हें मैच करके पहनने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस जो कंफर्टेबल लग रहा है वही पहन जाऊं। हम ऑफिस जो है अपने घर के पजामाज में क्यों नहीं जा सकते, मुझे तो ये फीलिंग आती है कई बार लेकिन आप देखिए घर के पजामा में जितने कंफर्टेबल रहते हैं अगर आप उतने ही अपनी वर्क प्लेस पे भी रहना चाहते हैं तो जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ बस आप इन्हें फॉलो कर लीजिए। सो सबसे पहले तो आप लिनन पैंट्स जो है वो आप चूज कर सकते हैं। लिनन पैंट्स जो है कंफर्टेबल होती हैं लेकिन उनमें एक दिक्कत आती है कि आपको जो है आयरन बहुत करना पड़ता है एंड उनका मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। सो अगर वो नहीं तो आप डेनिम जो है वो ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कशिश यार डेनिम सीरियसली इतनी गर्मी में तुम बोल रही हो कि डेनिम्स पहनी जाए, डेनिम्स पहननी है लेकिन उनका कलर जो है वो ध्यान में रखना है। सो डेनिम्स जो है आप जो ब्लू डेनिम्स या ब्लैक डेनिम्स या वॉश वाली डेनिम्स जो है वो पहन रहे हैं उनकी जगह आप डेनिम्स को स्विच कर सकते हैं वाइट या बेज कलर में। सो जैसे ही आप कलर स्विच करेंगे बेज या वाइट में तो वैसे ही डेनिम का जो फैब्रिक है वो मतलब हीट एब्जॉर्ब करने की जगह जो है उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। सो आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी कूलर वाइब आएगी एंड डेनिम्स का क्या होता है ना कि मेंटेनेंस भी कम होता है। हाँ, वाइट कलर आप अगर थोड़े से क्लम्जी हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा मेंटेन करना, पर कंपैरेटिवली बाकी किसी और पैंट से ये ज़्यादा ईजी है एंड इसे स्टाइल करना भी बहुत आसान है। सो आज की फैशन टिप यही थी कि अगर आप एक अच्छे बॉटम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इन समर्स के लिए एक लाइट कलर बॉटम, लाइट कलर डेनिम पे जो है आप स्विच कर लीजिए। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना चांद मेरा दिल मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। आकर जो व्हाट्सएप पे यूजर नेम वाला फीचर अभी अभी आया है ना उस पे क्या कलेश हो रहे हैं इन पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड रहिए, मैं हूँ आपकी कशिश, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Chicks. Brought to you by Danat Al Fahad, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
1: सो जी, आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11. दैट मीन्स 11:12:11.
0: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. दानत अल फहद, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सूक वाकिफ अल खोल.
2: This is Amaya Dastur on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: किसी बात का दुख नहीं है मुझे, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है मेरा, कोई जो है दिल नहीं टूटा है मेरा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये गाना सुन के दुख सा हो जाता है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई। मैन वीकेंड वाइब जो देखो चली रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जो है कलेश भी चल रहे हैं एंड कलेश अपडेट मैं यानी आपकी कशिश आपको ना दूं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फुल ऑन एयर कलेशी हूँ मैं। सो देखिए अभी रिसेंटली मैंने आपको ये भी बताया था और सबने ही बताया था, सिमरन भी अभी कुछ टाइम पहले जो है अपने शो पर यही बात कर रही थी कि कैसे व्हाट्सएप पे जो है आप यूज़र नेम जो है अपना लगा सकते हैं एंड उसके बाद उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से आप एक पिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इस बात पे जो है फुल ऑन कलेश हो रहा है। आप इंडिया में जो है ये मांग की जा रही है व्हाट्सएप से, मेटा से, कि ये जो फीचर है आप इसे रोल डाउन जो है ना करें, इसको जल्दी से वापस ले लीजिए, बिकॉज ये जो है काफ़ी सारे स्कैमर्स को जो है एक इनवाइट हो सकता है। अगर कुछ लोगों ने पिन नहीं सेट किया या सिर्फ यूज़र नेम अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसको फिर खतरा हो सकता है, किसी की प्राइवेसी जो है वो इंट्रूड हो सकती है। अब इसके पीछे के और क्या क्या पॉइंटर्स हैं वो तो देखो बहुत डिटेल में जानना पड़ेगा, अगर आपको जानना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मतलब बात तो देखो सही है, कोई भी नया फीचर आता है तो उसके फायदे होते हैं, साथ में नुकसान भी होता है। जब इंस्टाग्राम पे ये वाला फीचर आया था कि आप किसी की भी स्टोरी जो है वो देखोगे तो आपको मतलब आपको पता चल जाएगा आपकी स्टोरी कौन कौन देख रहा है, या आपकी स्टोरी जो है 48 आवर्स तक रह सकती है, तो इसमें भी लोगों ने लूप होल तो ढूंढ ही लिया था कि यार ये नुकसान है ये फायदा है। सो हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, आपको क्या लगता है या आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर कि ये व्हाट्सएप का यूजर नेम वाला फीचर क्या हमारे लिए सच में काम वाला है या नहीं है। फिलहाल आपके काम की एक बात, अगर आप मूवी फैन हैं एंड आप कतर में हैं सो आपके लिए वो मैं लेकर आने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और बाकी आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

लव के लिए कुछ भी तो देखो करा जा सकता है, लेकिन लव ढूंढने के लिए भी कुछ भी किया जा सकता है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मैंने मतलब थोड़ी देर पहले जो है गानों से पहले आपको ये कहा था कि जितने भी मूवी लवर्स हैं कतर में, उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ जो है वो आ चुकी है। कतारा में जो है 14th of July को जो है एक बहुत ही स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग होने वाली है, इंग्लिश मूवी की। हाँ जी, श्रीदेवी जी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मूवी है इंग्लिश, जिसे मतलब जिसके कुछ गाने मैंने सेव करके रखे हैं कि यार इस पे रील बनानी है, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है। सो अगर आप इस रिलेटेबल मूवी का जो है पार्ट बनना चाहते हैं सो आप जा सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुझे डिटेल्स मिलेंगी वैसे आगे देती रहूंगी। बाकी अभी के लिए तो डिटेल ये है कि कटारा पे ये मूवी स्क्रीनिंग होने वाली है। बाकी कोई डिटेल चाहिए तो मैसेज भी कर सकते हो, बाकी आगे शोज में जो है आपको इसके बारे में डिटेल्ड चीजें पता चलती रहेंगी। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर लुटेरा मूवी से, इसे एंजॉय कीजिए एंड आकर फिर आपको मैं एक वीकेंड वाला स्पेशल ज्ञान जो है वो देने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30.
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 June 29 से.
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, 20 फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में.
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए. सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर.

0: गाने का नाम रसिया और मूवी का नाम ब्रह्मास्त्र और मेरा नाम तो आपको पता ही है आपकी कसिस 106.3 रेडियो ऑलिफर मैं हूँ आपकी कसिस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है एंड मैंने जैसे कहा था कि एक बहुत ही अमेजिंग चीज मैं आपको वीकेंड के लिए बताने वाली हूँ सो मैं बस यही बताने वाली थी कि क्या कुछ खास हो रहा है इस वीकेंड पर जहाँ पर आप जाकर इंजॉय कर सकते हो सो कतर टॉय फेस्टिवल हो रहा है जिसे आप इंजॉय कर सकते हो बूम बूम चेक प्ले जो है वो हो रहा है कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में उसे इंजॉय कर सकते हो दोहा समर ट्रेड फेयर जो है वो भी हो रहा है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में एंड अगर मैं साथ में बात करूं तो ट्रेड फेयर जो है समर ट्रेड फेयर वो भी हो रहा है इस वक्त वहाँ पर भी आप इंजॉय कर सकते हो फैमिली समर शॉपिंग एग्जीबिशन जो है वो भी हो रहा है कटारा हिल्स पर सो वहाँ पर भी आप जा सकते हो मैं भी देखती हूँ इनमें से ही किसी एक जगह पे जाऊँगी अगर आपको इसके अलावा कोई ऐसी जगह पता है जहाँ जाकर हमें फ़न कर सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं तो 3311063 पर जल्दी से आके मुझे मैसेज कर दीजिए और बता दीजिए फिलहाल मैं चलती हूँ मुलाकात होगी अब कल टेक टॉक पर शाम को 4 बजे सो स्टे ट्यून्ड रहिए एंड बाकी वही कहूंगी जो अक्सर कहती हूँ कि अपना ख्याल रखिए गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए खाना खाते रहिए पानी पीने का बिल्कुल ध्यान रखिएगा सनस्क्रीन लगाकर रखिएगा और कल मुझसे मिलने जरूर से आना फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय कीजिए कहते रहिए जियो बिंदास टाटा बाय बाय हैप्पी वीकेंड
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

0: Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Hi, this is Kailash Kher and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC apply.

Good afternoon. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is Bee Buskan with you. Our show ka naam hai Olive Recharge. Aur beautiful si afternoon mein ab Muskan aapke saath hai Olive Recharge lekar, jahan agle 3 ghante hum sirf gaane nahi balki aapke mood ko yes recharge karenge like yesterday. वैसे सच सच बताऊं, अभी लंच हो गया है या फिर अभी आपने लंच करना बाकी है? क्योंकि मैं तो भाई लंच करके एकदम रेडी होके आई हूँ, बट रिसर्च ये भी कहती है भाई कि लंच के बाद ना थोड़ा सा आलस आता है. तो मैंने लंच किया, उसके बाद मैंने अपना एक बढ़िया सा कप कॉफी पिया एकदम स्ट्रांग, और उसके बाद म्यूजिक के साथ मैं रिचार्ज होके आपके लिए आ गई हूँ. सो यहाँ ऑफिस में यू नो वो क्लासिक लाइन चल रही है कि बस मैं मेल करके लंच के लिए चलता हूँ. और ऐसे ही यू नो हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं ऑफकोर्स, तो एक एक करके ऐसे कोई ग्रुप जाता है, फिर दूसरे थोड़ी देर में दूसरा ग्रुप जाता है. सो आफ्टरनून का जो टाइम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. ये दिन वो ये ना हिस्सा याद दिला देता है जब हम स्कूल में हुआ करते थे और सिर्फ 30 मिनट्स मिला करते थे लंच करने के लिए, और सबको एक साथ लंच करना होता था और सब एक साथ अपना लंच ख़त्म करते थे, और किसी किसी की प्रायोरिटीज़ होती थी कि भाई लंच में अपने दूसरे जो सेक्शन के फ्रेंड्स हैं उसके साथ लंच करना है या मिल के बैठ के लंच करना है. सो यू नो अभी मुझे वो दिन याद आते हैं. सो आई वॉज थिंकिंग कि हम फ़ोन की बैटरी ना 20% होते एकदम चार्जर ढूंढने लग जाते हैं, पर खुद की बैटरी 2% पर भी चली जाए ना तो बोलते रहते हैं बस थोड़ा सा काम और है करके चलते हैं. सो आज का शो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, थोड़ा सा रिचार्ज भी है. क्रिकेट भी होगा, बॉलीवुड भी होगा, कतर की अपडेट्स भी होंगी, और बीच बीच में कुछ ऐसे थॉट्स जो शायद आप घर तक लेकर जाएंगे. सो वी विल टॉक अबाउट दैट. सो सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है मेरा 3311063. शुरू हो जाइए मैसेजेस करने के लिए. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Hi Radio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.
2: Is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक।
3: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC अप्लाई।

0: सो एक छोटा सा सवाल है आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक नंबर के लिए लोग हजारों लाखों कभी कभी तो पता नहीं कितने ज़्यादा मतलब अमाउंट को खर्च करने के लिए रेडी हैं, और अगर मैं रियाल्स में बात करूँ तो ऑफकोर्स आपको पता ही है कि इस टाइम पर अच्छा खासा मतलब खर्चा करने के लिए लोग तैयार हैं। सो लोग इसे पागलपन कहेंगे, पैशन कहेंगे या प्रेस्टीज कहेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के हर देश में कुछ लोगों के लिए नंबर प्लेट सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होती, वो आइडेंटिटी होती है। किसी को अपनी लकी डेट चाहिए होती है, किसी को सिंगल डिजिट, और किसी को अपना बिजनेस नंबर, और किसी को बस एक ऐसा नंबर जो सबको याद रहे। और इसीलिए कतर में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सोम ऐप पर कुछ नए सिग्निफिकेंट प्लेट जो है नंबर प्लेट्स वो रिलीज किए हैं, और 5 जुलाई से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन होगा। अगर एक ही पर्सन इंटरेस्टेड हुआ तो नंबर लिस्टेड प्राइस पर मिल जाएगा, और अगर एक से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हुए तो फिर शुरू होगी बिडिंग। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की वैल्यू ना सिर्फ उसकी यूटिलिटी से नहीं होती, उसकी रेयरिटी से से लगाया जाता है। जो चीज़ सबके पास नहीं होती उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसीलिए लिमिटेड एडिशन वॉचेस, रेयर स्नीकर्स और VIP नंबर प्लेट्स जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आपको लाइफ में एक स्पेशल नंबर प्लेट फ्री में मिल जाए तो कौन सा नंबर है जो आप चूज करोगे? योर बर्थ डेट, योर लकी नंबर, या सिर्फ नंबर 1? सो मैसेज करके बताइए 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है? कूल सॉन्ग।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर।
3: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Nasim Medical Center, Al-Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Dr. On Air, brought to you by Nasim Healthcare. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On air visibility supported by performance driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by.
6: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
7: दोहा बैंक,
6: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

सो क्रिकेट में दो चीजें कभी प्रिडिक्ट नहीं होती, एक तो एक लास्ट ओवर और दूसरा इंग्लिश वेदर. यस, कल मैच जो था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का, उसके बीच में T20 मैच में हुआ क्या, इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 189 रन्स बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, एक स्ट्रॉन्ग टोटल. फिर फैंस हुए एक्साइटेड और सब सोच रहे थे कि अब इंग्लैंड चेस करेगा, लेकिन नेचर के अपने प्लान्स थे भाई, बारिश आई और मैच जो है वो रद्द हो गया. अब वैसे क्रिकेट हिस्ट्री देखी जाए तो इंग्लैंड की ग्राउंड्स पर रेन का जो रिश्ता है काफी पुराना है, कभी वर्ल्ड कप मैचेस में, कभी टेस्ट क्रिकेट में और कभी T20s में. सो क्लाउड्स कभी कभी सबसे डेंजरस बॉलर बन जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेट की खूबसूरती भी इसी में है. हर मैच सिर्फ प्लेयर्स के बीच में नहीं होता, कभी वेदर के साथ भी होता है. सो आज का सवाल है कि आपके हिसाब से क्रिकेट का सबसे बड़ा विलन कौन है, बारिश या फिर बुरी लाइट्स या फिर कुछ और? बताइए मुझे मैसेज करके 3311063 पर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव और ये है ऑलिव रिचार्ज और मुस्कान है आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Story of the day.
1: Story of the day. Story of the day.
2: दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज मेडिसिन नहीं, होप है. और डॉक्टर्स रोज ये लैंग्वेज बोलते हैं, कभी स्टेथोस्कोप से तो कभी सर्जरी से और कभी सिर्फ एक स्माइल से. इस डॉक्टर्स डे पर सैल्यूट उनको जो इलाज से पहले उम्मीद देते हैं. हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Bindas. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Only recharge.
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
3: Olive Recharge
4: This hour is brought to you by
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
6: दोहा बैंक
5: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कल का रिजल्ट। आज मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि भाई कल का जो मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, वो रद्द हो गया बारिश की वजह से। आज की गारंटी नहीं होती भाई, और अगला जो मैच है वो 4th of July को होने वाला है। टुडे इज 2nd of July। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। एक तरफ इंडिया जिसने बैटिंग में कॉन्फिडेंस दिखाया, दूसरी तरफ था इंग्लैंड जो अपने होम कंडीशंस में हमेशा डेंजरस रहता ही है। लेकिन मुझे स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा एक और चीज जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है, वो है प्रेशर। प्रेशर में कौन बेटर डिसीजन लेता है, कौन कम बैक करता है और कौन मोमेंटम के कंटिन्यू रखने की कोशिश करता है, चैंपियंस वही बनते हैं। वैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहती है कि विनिंग टीम और ऑर्डिनरी टीम्स के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ना टैलेंट नहीं होता, रिकवरी होता है। जो टीम एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट के बाद जल्दी बाउंस बैक कर जाती है, वही लॉन्ग टर्म टूर्नामेंट जीतती है। और इसीलिए नेक्स्ट मैच सिर्फ एक और फिक्स्चर नहीं है, एक नई कहानी, एक नया प्रेडिक्शन, एक नया हिसाब। और इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड जीतेगी ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा ये भी उसी दिन पता चलेगा, लेकिन आप गेस कर सकते हो। देखते हैं रेडियो ऑलिव के लिसनर्स की क्रिकेट प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट निकलती है। 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30।
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से।
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में।
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए। सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC अप्लाई.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: सो एक जमाना था जब कोच बोलते थे कि ग्राउंडेड शॉट्स खेलो, रिस्क मत लो। और आज का जमाना देखिए, बस यू नो बैट्समैन के सिक्सेस कम होते हैं और लोग उसी से सवाल पूछने लग जाते हैं। सो क्रिकेट कितना बदल गया है यार, और इस बदले हुए क्रिकेट की एक और मिसाल बन गया है अभिषेक शर्मा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 4 और सिक्सेस लगाए और सिर्फ 785 बॉल्स में अपने 100 T20 सिक्सेस कंप्लीट कर लिए। और इसी के साथ उन्होंने वेस्ट इंडीज के जो एक्सप्लोसिव बैटर है ऑफकोर्स इवन लुइस, उनका रिकॉर्ड भाई तोड़ दिया है, जिन्होंने ये माइलस्टोन जो है 789 बॉल्स में अचीव किया था। और अभिषेक शर्मा के बॉल्स हैं 785, मतलब 4 बॉल कम। अब जरा इमेजिन कीजिए, 100 बार सिक्सेस और सिर्फ 785 बॉल्स, मतलब लगभग हर 8वीं बॉल पर बाउंड्री के बाहर। ठीक है, ये सिर्फ पावर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। और मुझे लगता है कि ये जो मॉडर्न क्रिकेट का बिगेस्ट चेंज है ना, ये भी बढ़िया है। मतलब पहले बैट्समैन विकेट बचाता था, आज बैट्समैन जो है वो मोमेंटम बनाता है। पहले स्कोरबोर्ड प्रेशर क्रिएट करता था और आज स्ट्राइक रेट प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और इसी वजह से T20 क्रिकेट में इतना एंटरटेनिंग मजा आने लग गया है, बहुत अच्छा लगता है देख के। वैसे एक फन क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको एक ही बैटर देखना हो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो कौन होगा? अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह या फिर कोई और? व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हो आप, 3311063 इज माय नंबर। देखते हैं रेडियो ऑलिव के फेवरेट एंटरटेनर कौन है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है ऑलिव रिचार्ज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30।
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से।
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में।
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए। सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: ले लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ओलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
5: इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

आज शाम क्रिकेट लवर्स के लिए एक और ब्लॉकबस्टर मुलाकात एकदम तैयार है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल वॉच दिस मैच। और अब बात करते हैं भाई बॉलीवुड की। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, मुस्कान है आपके साथ और ये है ऑलिव रिचार्ज। भाई एक मूवी का ट्रीजर आया है जिसका नाम है टॉक्सिक, सिर्फ कुछ सेकंड का लेकिन पूरे इंटरनेट पर डिस्कशन। बॉलीवुड का मैजिक ही यही है यार, मतलब आपको कुछ ऐसा देगा। और यू नो यश को हम सबने KGF में देखा था, जहां उनका लार्जर देन लाइफ अवतार जो है वो लोगों को बहुत पसंद आया था। और अब टॉक्सिक के टीजर ने एक बार फिर से क्यूरोसिटी बढ़ा दी है। वैसे आपने नोटिस किया कि आजकल ऑडियंस ना सिर्फ हीरो नहीं देखना चाहती, वो एक वर्ल्ड देखना चाहती है। KGF, पुष्पा, कांतारा, इस तरह की जो फिल्म्स थी, ये सिर्फ फिल्म्स नहीं थी, ये पूरी यूनिवर्स थी। और इसीलिए पैन इंडिया सिनेमा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन इमोशंस सबको कनेक्ट करते हैं। अब देखना ये है कि टॉक्सिक भी वही इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती है या नहीं। वैसे सवाल ये है कि अगर यश की जो सिर्फ एक फिल्म अगर आप किसी को बताओ कि यार ये ज़रूर देखना, तो वो कौन सी होगी? ऑफकोर्स आप कहोगे KGF ज़रूर देखना यार, लेकिन अगर कोई और मूवी है तो बताइए मुझे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindas.

0: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज, ओनली रिचार्ज,
2: ओनली रिचार्ज। रेडियो ओनली 106.3 FM पर जियो बिंदास,
1: ओनली रिचार्ज।

सो इंस्टाग्राम खोलिए और आज कल एक ट्रेंड आपको बार बार दिखेगा कि लोग सुबह उठते ही फेस को आइस वाटर में डिप कर रहे होते हैं और कैप्शन होता है कि मॉर्निंग ग्लो, ग्लास स्किन, नेचुरल बोटॉक्स, ये सब लिखा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड वापस वाकई में काम करता है? तो ये सिर्फ रील्स के लिए अच्छा लगता है या फिर एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट इसको कुछ कहते हैं? तो भाई आइस जो है वो टेम्पररी फेस को जो पफिनेस होती है वो कम कर देती है, स्किन को थोड़ा फ्रेश फील करवाती है, स्पेशली अगर आपकी नींद कम हुई है तो। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। लेकिन परमानेंटली पोर्स छोटे नहीं करती, एक्ने क्योर नहीं करती और अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो डायरेक्टली आइस कभी कभी इरिटेशन भी कर सकती है। मतलब ये ट्रेंड फॉलो करने से पहले स्किन को समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि हर चीज वायरल होती है लेकिन हर चीज हर इंसान के लिए सही नहीं होती। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। वैसे मैंने कभी आइस चैलेंज किया नहीं है, लोग बहुत ज्यादा इसे फॉलो करते हैं, स्पेशली मॉर्निंग रूटीन में इसको रखते हैं या फिर इवनिंग में आइस अपने फेस पे लगाते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप मुझे बताइए, आप ब्यूटी ट्रेंड ब्लाइंडली फॉलो करते हो या पहले अच्छे से रिसर्च करते हो और आपको लगता है कि यार नहीं ये मेरी स्किन पे जाएगा या नहीं जाएगा, ट्राई करूं या नहीं करूं? क्या आपने कभी आइस फेशियल ट्राई किया है? एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना मेरे साथ। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive, Geo Bindas.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

सुना मुझे ऐसा होता है कभी कभी ऑफिस में ना खाना खाने के बाद, और स्पेशली जो दिन का टाइम होता है जहाँ पर यू नो 3 से 4 बजे का बीच का टाइम और 2 से 4 वाला जो टाइम होता है ना, एक ऑनेस्ट कन्फेशन कर रही हूँ, मतलब ऑफिस में रहते हुए ना इस टाइम पर नींद आती है और घर पे तो मैं सो ही जाती हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है ऑलिव रिचार्ज। और इस वक्त थोड़ी सी नींद आना इट्स वेरी नॉर्मल यार, मतलब रिसर्च भी कहती है

दोपहर में 2 से 4 के बीच में हमारा जो बॉडी का एनर्जी लेवल है वो नेचुरली थोड़ा सा ना डाउन हो जाता है, इसे आफ्टरनून स्लंप कहते हैं। इस वजह से इस टाइम कॉफी शॉप्स थोड़ी सी बिजी ज्यादा होती है, मतलब आफ्टर 4 आपने देखा होगा कि लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं 4-5 बजे, यू नो। सो मैं तो अपनी अगली कॉफी के लिए तैयार हूँ, और ऑफिस में लोग बोलते हैं कि चलो एक चाय पी जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर पॉसिबल है तो 15-20 मिनट का पावर नैप ले लेना चाहिए, इवन इन ऑफिस। जब आप लंच कर रहे होते हो तो लंच के बाद फटाफट से एक 15 मिनट का पावर नैप ले लो, और ये सिर्फ 5 मिनट की वॉक भी अगर आप कर लेते हो तो भी आपको बेटर फील होता है। सो ब्रेन को ना रीसेट मिल जाता है। सो अगर आपके ऑफिस में ऐसे एक एरिया है जहां पर आप आराम से 20 मिनट सुकून से बैठ सकते हो तो वो कर सकते हो, या फिर अगर वैसा कुछ नहीं है तो 5 मिनट का एक वॉक आफ्टर लंच जरूर किया करो, ब्रेन को रीसेट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर आप पॉसिबल नहीं है तो खूब सारा पानी पियो, थोड़ा स्ट्रेच करो, और स्क्रीन से 2 मिनट के लिए थोड़ा सा नजर हटा लो। कभी कभी प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट ना ज्यादा काम करना नहीं होता, सही टाइम पे ब्रेक लेना होता है। सो आई विल से कि आपका आफ्टरनून रिचार्ज फॉर्मूला जो है वो आप मुझे बताओ क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉफी, कड़क चाय, या फिर ऑफिस की पैंट्री में थोड़ी सी गॉसिप। 3311106 इज माय नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, यो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Gio Bendaz.
1: Hello, मैं हूँ नीना गुप्ता.
2: नीना गुप्ता.
3: Radio.
1: आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3.
0: Olive सुनो Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
3: Radio Olive, our number one.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
6: दोहा बैंक
5: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC apply.

0: सो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह की बात हो रही है, मतलब हर जगह पर आपको एआई मिल जाएगा, लेकिन एक फील्ड है जहां एआई ना धीरे धीरे बहुत बड़ा काम कर रहा है, विच इज हेल्थ केयर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। आज दुनिया भर में एआई टूल्स डॉक्टर की हेल्प कर रहे हैं, मेडिकल स्कैन्स को एनालाइज कर रहे हैं, सो अर्ली वार्निंग्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है और कुछ केसेस में डिसीजेस को जल्दी डिटेक्ट करने में भी। लेकिन एक बात क्लियर है कि एआई डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता भाई कभी भी। डॉक्टर्स आर लाइक सुपर सुपर डुपर प्रोफेशन, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। सो एआई डॉक्टर का असिस्टेंट बन सकता है और मुझे लगता है कि फ्यूचर का बेस्ट मॉडल भी यही है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस साथ साथ में काम करें और एक मशीन डेटा दे सकती है, लेकिन पेशेंट का हेल्थ और हाथ पकड़कर जो हिम्मत है ना, वो सिर्फ एक डॉक्टर और एक इंसान ही दे सकता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि भाई एआई आपकी लाइफ के बोरिंग काम को परमानेंटली कर सकता है। सो आप क्या चूज करोगे, कोई ईमेल्स भेजना, कोई बिल्स भेजना, या कोई खाना बनाने वाला जो काम होता है, कौन सा काम है जो आप चाहते हो कि मतलब ये जो एआई है ये कर दे? बाकी मैं तो ये चाहूंगी कि यार जो संडे का जो दिन होता है ना, जब वीकडे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले एआई ही ऑफिस जाए और वही सारी माहौल को देख के बता देते कि आज क्या क्या करने वाले हैं। सो मैं आराम से संडे को दोपहर तक ऑफिस पहुंचूं, जब मेरा मुझे ऐसे लगे कि हाँ वीकेंड मतलब खत्म हो चुका है, मुझे थोड़ा सा ऐसे फील आने लग जाए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर, आप मुझे बताइए 3311063 पर क्या चाहते हो आप, AI आपके लिए कौन सा काम करे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक,
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

चलिए आज ऑलिव रिचार्ज में रिचार्ज चैलेंज जो है वो अनाउंस करते हैं, और इसमें ना कोई भी आपके यू नो अमाउंट खर्चा नहीं होने वाला, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ एक मिनट। चैलेंज ये है कि आज घर पहुंचने के बाद फोन को साइड में रखना है और घर के किसी एक इंसान से सिर्फ 5 मिनट बात करनी है विदाउट चेकिंग नोटिफिकेशंस। वैसे कल का चैलेंज ये था कि 1 मिनट के लिए शांति से बैठना है, और आज है 5 मिनट। 5 मिनट किसी से बात करनी है विदाउट इवन चेकिंग योर नोटिफिकेशंस, विदाउट लुकिंग एट इंस्टाग्राम, बस कॉन्वर्सेशन। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स ऑलिव रिचार्ज। इंटरेस्टिंग रिसर्च कहती है कि एक जो जेन्युइन कॉन्वर्सेशन होता है ना, वो मेंटल हेल्थ के लिए उतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है जितनी आपकी स्लीप। हम सब कनेक्टेड बहुत हैं, लेकिन प्रेजेंट कितनी बार होते हैं ये बहुत डिफिकल्ट है भाई। आज ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको रियलाइज हो कि सबसे अच्छा नोटिफिकेशन फोन से नहीं बल्कि किसी अपने के स्माइल से आता है। और अगर चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो रेडियो ऑलिव के व्हाट्सएप नंबर पर एक वर्ड भेज देना, डन। 3311063 इज माई नंबर, और देखते हैं भाई कितने मैसेजेस आते हैं इस पे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Story of the day.
1: Story of the day. Story of the day.
2: दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज मेडिसिन नहीं, होप है. और डॉक्टर्स रोज ये लैंग्वेज बोलते हैं, कभी स्टेथोस्कोप से तो कभी सर्जरी से, और कभी सिर्फ एक स्माइल से. इस डॉक्टर्स डे पर सैल्यूट उनको जो इलाज से पहले उम्मीद देते हैं. Happy Doctor's Day to all the doctors.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Hey, can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30.
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 जून 29 से.
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में.
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए. सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
2: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर. ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
6: दोहा बैंक
5: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC apply.

सो आई हैव टू से कि अच्छा तो अब हम चलते हैं. रिचार्ज का मतलब क्या होता है? मतलब और बस, आज का ऑल ऑफ रिचार्ज का सफर यहीं पर खत्म होता है क्योंकि आपका रिचार्ज जो है वो फुल हो चुका है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल ऑफ रिचार्ज. लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा थॉट कि हम रोज फोन चार्ज करते हैं, लैपटॉप चार्ज करते हैं, कार में फ्यूल भरवाते हैं, लेकिन खुद को रिचार्ज करना हम अक्सर भूल जाते हैं. और रिचार्ज का मतलब सिर्फ हॉलीडे नहीं होता है, मैंने आपको कल भी बोला था. इसका मतलब होता है रिचार्ज को एक कप चाय पी लो, कभी फोन पे किसी अपने से बात कर लो, कभी दोस्त की हंसी सुन लो, और कभी सिर्फ मना करना. मतलब अगर कुछ काम करने का मन नहीं है तो उसको कह दो यार कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है और मैं ऑलरेडी टायर्ड हूँ बाकी सारी चीजों को लेके. सो हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होना चाहिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि यार छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, तो उस स्ट्रेस को हटाइए. और फिर कल मिलते हैं मेरे सेम टाइम पर, यानी कि रात को मिडनाइट लाउंज लेके. बाय द वे कल तो फ्राइडे है. ओह मैं तो भूल ही गई थी. बाय द वे कल हम मिलने वाले हैं शाम को, जहां पर हम बात करने वाले हैं हैप्पी वीकेंड्स में लॉट ऑफ न्यू कॉन्वर्सेशंस के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो ऑल 106.3 एफएम. बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

ஜெயிக்கிறேன் தம்பியே. इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जिसने अपना मन बना लिया बेटे वो चला जाएगा, और आपको कोई

लिए गाना डेडिकेट करेंगे। उच्ची बोलो, सारे बोलो बेवफा नहीं, हैप्पी वीकेंड, क्योंकि हम सबकी जिंदगी एक जैसी थोड़ी होती है यार, लेकिन एक जैसा वीकेंड हम सबका जरूर हो सकता है अगर आप सारी टेंशन छोड़ के, सारा ऑफिस का काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे वीकेंड के ऊपर। अरे बेटा, वैसे आपका वीकेंड तो स्टार्ट हो चुका है, मेरा अभी काम बाकी है, लेकिन ये काम काम नहीं बोलूंगी, इसमें मजा आता है यार। चार घंटे में भी अपने होने वाले, 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ। वीकेंड के क्या प्लान्स हैं, उसके साथ साथ आपका आज का दिन कैसा रहा, आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के साथ मुझे भेज दो 3311063 पर। और भूलिएगा मत, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हैं तो मुस्कुराना बनता है यार। एंजॉय करो गुरु रंधावा की आवाज दे विच। ये गाना जो भी गाना गाते हैं ना, शहरों के नाम लैंड लग जाते हैं, कदे कुछ

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 rials growth पर पाइए एक coupon.
1: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
0: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra coupon or mega draw ticket.
2: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: कह रहा है
1: अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे।
0: बिल्कुल ऐसी होगी फिर कहेगा
2: ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है।
0: एक नंबर गाने चल रहे हैं, वीकेंड का माहौल बना हुआ है। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे वीकेंड वाले मैसेजेस भेजे हैं। सो अगर आप मुझे सुन रहे हो और मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, मैं उसका क्या करूं, मैं उसका अचार थुन्ने डाल लूंगी। आपने मुझे लिख के भेजना है ये सिमरन हैप्पी वीकेंड दिस एंड दैट, ऐसी ऐसी चीजें आप मुझे लिख के भेजिएगा। ओके, वीकेंड के बारे में हम वापस दौड़ के बात करते हैं, लेकिन मैच के बारे में बात करते हैं जो कि आपके वीकेंड का एक पार्ट बन सकता है। अगर आपको कोई भी प्लान नहीं है तो मैच देखने चले जाइए। रात के 10 बजे जो है वो स्पेन एंड ऑस्ट्रिया का मैच जो है वो होने वाला है। सो यस, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो प्लीज मुझे जरूर बता दीजिएगा। सिमरन कौर है आपके साथ, चियो बिंदास।
3: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
4: In association with...
5: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
6: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
5: Your trusted remittance partner.
7: Ab suniye, Olive ka zabardast hai.
8: Zabardast.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Can I have your number?
1: Why not? लिखो 10, 20, 30।
0: अब पूरे कतर में यही गूंजेगा क्योंकि सफारी में स्टार्ट हो चुका है 10, 20, 30 June 29 से।
1: आपके डेली एसेंशियल्स, ग्रोसरीज, बेकरी एंड हॉट फूड से लेकर फुटवेयर, बैग्स, ट्रेंडी फैशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी तक सब कुछ मिलेगा बिल्कुल आपके बजट में।
0: शॉप कीजिए और मेगा लकी ड्रॉ के जरिए 30 बेस्ट ट्यून कार्स जीतने का सुनहरा मौका पाए। सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस Doha, Qatar. A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn? अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर Malabar Gold and Diamonds, golden summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: जावेद अली की आवाज, क्या खूबसूरत गाना यार। खूबसूरत शाम में खूबसूरत सा वीकेंड है और एक नंबर शोवा सुन रहे हो सिमरन कौर के साथ। मैं कहती सोने कितना देखी हाल चाल। देखो यार, वीकेंड आ गया, हर वीकेंड पे अगर आपको मूवी देखने का मन है तो कल अल्फा मूवी जो है वो रिलीज हो रही है, आलिया भट्ट और शार्वरी की, और जिसमें बॉबी देओल भी है, बहुत सारे और एक्टर भी हैं, लेकिन इसका ट्रेलर काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और ये फिल्म कल रिलीज हो रही है, पहले मुझे लगा था यार थर्सडे हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली ये 3 तारीख को ही हो रही है। सो डेफिनेटली इस फिल्म को आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज में मुझे अच्छी लगी, जो अपने यू नो फिल्म के प्रमोशन के टाइम इन लोगों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि मैं बोर हो गई हूं सारे सेलिब्रिटीज को देख के। जब भी वो फिल्म प्रमोट करते हैं खाना खाने लग जाते हैं, तो ये नहीं खा रहे हैं, सो इट्स गुड। एंड उसके साथ साथ अगर आपको बाहर नहीं जाना है, नेटफ्लिक्स पे बैठ के देखने है, तो दादी की शादी, जी हाँ, नीतू सिंह की एक मूवी आई थी ना थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले, जिसमें कपिल शर्मा भी है। सो दादी की शादी नेटफ्लिक्स पे आज रात को 9:30 बजे के अराउंड मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए, क्योंकि ये कल की डेट दिखा रही है। लेकिन 9:30 बजे तो अपना आपको पता ही है कि इंडिया वाला जो है वो 12 जो है वो बज जाते हैं। सो या ये 2 ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आप मूवी नहीं देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं?
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: घर के जिया
2: वो क्यों भला
0: बता दीजिए आपका वीकेंड का क्या प्लान है, बैठने का मन है,

लव दिस फीलिंग यार, लेकिन कल्ले बैठना होता की करिए. But that's okay, completely fine. चांद होता है ना जब, फिर जरूरत नहीं होती किसी की, और एक अच्छा मौसम चाहिए. अपने कतर में वो फील भी आपको मिल जाएगी क्योंकि बहुत सारी जगह एयर कंडीशन है, ओपन में बैठ सकते हो, खुले आसमान दे थल्ले.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन।

0: सेवा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Radio Olive, I'm a number one.
1: इस गाने नू ना बस फील करो यार, बहुत ही प्यारा गाना. आई नो इस यू नो ये गाना जिहड़ा हैगा बाहर दे मौसम दे हिसाब दे नाल उन्ना ज्यादा नहीं हैगा, बट ठीक है, हर चीज फील करी दी हुंदी है म्यूजिक दे विच. ठीक है, फील करो. 2-1 एंड गो.

कमाल ही कर दी थी यार। दोस्तों गर्मी जो है वो बहुत सारी है, और पानी पी लीजिए। गाना भी आपके लिए सेम बजाऊंगी, क्योंकि पानी पीने के बाद

जिगर ठंडा रहे। सो जिगर को ठंडा रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए, लाइफ जो है ना वो बिल्कुल सेट हो जाती है। क्योंकि अगर आपके जिगर में जलन है और दिमाग में गर्मी है तो फिर कुछ भी सही जो है ना वो हो नहीं सकता है। एंड थैंक यू सो मच, आप मुझे हैप्पी वीकेंड के मैसेजेस भेज रहे हो, उसके बीच में आप मुझे सॉन्ग रिक्वेस्ट भी कर रहे हो। आई नो वीकेंड के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा मन होता है यार रिक्वेस्ट का गाना प्ले कर दो, तो आप एक काम करिए, आप ना मुझे जो भी गाना है सुनना चाहते हैं आप, मैं सबका तो नहीं प्ले कर पाऊंगी लेकिन यस एक आध गाना जो है वो मैं जरूर जो है जलूल होने लगा था जरूर जो है वो प्ले कर दूंगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी रूल्स फॉलो करनी है, ऐसे नहीं लिख के भेजो कि ये गाना बजा दो, ऐसे नहीं होता, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। हे सिमरन अपना नाम बताइए एंड उसके बाद वो गाना एक आध लाइन थोड़ा सा गा के भेजिए, और दर्द ही दर्द नहीं चाहिए, लोगों के पास ऑलरेडी जिंदगी में बहुत दर्द होता है, वीकेंड के टाइम पे हम दर्द नहीं देंगे गानों के थ्रू, एटलीस्ट मेरी बातों के थ्रू तो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ना दर्द ली थी ना दर्द देती हूँ किसी को। दिमाग लगता है भाई, लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं लोगों को तंग करने में, दुखी करने में, दर्द देने में, तो ये काम नहीं करना चाहिए। सो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, 3311063 भेज दो, और भूलिएगा मत थैंक यू गॉड कहने के लिए। गाना सुनिए आपको अपने पता लग जाएगा, मैं तो जीती हूँ इस गाने में।

listening to Radio Olive 106.3 FM. क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।

0: ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਥਾਰੋ ਗਾਗਰੋ ਜੋ ਘੁੰਮਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਗਾਗਰਾ। ਜਬ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ ਗਈ ਵੀ ਥੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ, ਮੈਨੇ ਗਾਗਰਾ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਥਾ, ਬਟ ਯੇ ਗਾਣੇ ਪੇ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲਾਈਫ ਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੇ ਹੋ। 6:05 PM 15 ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਪੇ सोचा कि एक ही लाइफ है यार, जो चाहते हैं वो कर ले, लेकिन हद होती है, कोई सीमा होती है। आप तो सारी हदें लांग गए।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ ये बात है।
0: आज एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एक रशियन बंदा बंदी, मतलब अभी तो वो कपल हो गए हैं, उन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए जो है वो सारी हदें जो है वो पार कर दी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर जो है वो बिल्कुल कोने में जाके चढ़ गए और एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। भाई साहब, ये चीजें खतरे से खाली नहीं, लोग अब बहुत ज्यादा डेयरिंग हो रखे हैं। लेकिन उसका बाद क्या हुआ, प्रपोज किया, साथ के साथ जो है वो पकड़ेंगे, फिर पकड़ लिया उनको कि भाई ये हरकतें तुम जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि कभी भी जो है ना, आप इतने डेयरिंग मत बनो कि आप अपने आप के लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो खड़ी कर सको। तो कभी भी रूल्स ना तोड़ो कुछ ऐसे। अगर आप अपने किसी को प्रपोज कर रहे हो, क्रिएटिव होना चाहते हो, तो हद में रह के क्रिएटिव हो, जहां पर नुकसान ना हो जाए यार, जानकर रूल्स भी ना टूटे।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khul.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर 1 आरजे
3: सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

ఏపీటిల్లో कन्या पे डाउट बा करना बनता है यार। मौसम अपडेट में अपडेट दोस्तों ये है कि 37 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी जो है वो 38% है, विंड जो है 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है और आज का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम जो है वो 30 तक जो है वो जाने वाला है। यस, हाई ह्यूमिडिटी है तो 30 भी जो है वो आपको बहुत ज्यादा लगने वाला है, बट ठीक है, इट्स ओके है, वीकेंड का टाइम है। कतर के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि एयर कंडीशन है, वहां पे आप जा सकते हो, बाहर चिल कर सकते हो। सुनते रहो रेडियो ओलिव कोर, कहते रहो जियो विंदास।

Hello.

0: वीकेंड पे ये गाने थर्सडे नाइट को बजना बहुत जरूरी है और उसके साथ
1: पहला तेरे नैन में देखे फिर देखे तेनू नी
0: छेती आगे मिल जाए भी देखा ऐसे होता है जब आप म्यूजिक के साथ गाते हो और फिर म्यूजिक के बगैर गाते हो कितने बेसुरे हो जाते हैं। इट्स ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि सिमरन कौर तू सिंगर नहीं बन सकती है, तू सुरीली नहीं है, बट स्टिल ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ में। साथ में के साथ मिनट 14 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे। एंड अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक इंसान आता है जिसके साथ या तो वो पूरी जिंदगी रहता है या फिर नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो एक्स के साथ जो है वो दोस्ती रखने की जो है वो एक वो रखते हैं कि हाँ दोस्ती रख लेते हैं, अगर लाइफ में प्यार नहीं चला तो दोस्ती जो है वो रख लेते हैं। अब इसके ऊपर एक स्टडी हुई है कि जो लोग यू नो रिलेशनशिप जब ब्रेक हो जाती है और आप अलग हो जाते हो तो उसके बाद भी अगर आप अपने एक्स के साथ फ्रेंड्स रहते हो तो ऐसे लोग जो है वो साइकोपैथ होते हैं। पहली बात तो ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है आपको अपने एक्स के साथ। मुझे लगता नहीं है कि जिससे आप एक बार इतना सारा प्यार करते हो उसके साथ आप कैसे दोस्त बन के जो है वो रह सकते हो। ठीक है सबके अलग अलग जो है वो इक्वेशन होती है, सबके अलग अलग जो है वो सीन होते हैं, बट या ये स्टडी ने तो अलग से बोल दिया अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप साइकोपैथ है, समझ जाइएगा।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक
3: अरमान मलिक
4: मैं नंबर वन
0: 106.3 FM रेडियो ओलिव जियो बिंदास ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
4: रेडियो ओलिव हमें नंबर वन
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ

0: and number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन एमोशन।

0: फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

और ये प्यार का बुखार है बेबी। ऑलराइट, अब नाम लेते हैं आपके। अब नेम गेम का रूल समझ लीजिए जिनको नहीं पता है, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी कभी रेडियो पे बोल दूं तो आप अभी कभी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है, ये नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखना है। नो वॉइस नोट, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ आपका एक लौता नाम भेज दीजिए 3311063 पर। जी हाँ, 3311063 पे क्विकली। चलिए मैं बोल रही हूँ नाम। अखिला चरण, नारायण, ध्वज, विक्रम, रिंकल, शिव, संधु, सलमान, मोहम्मद जी, मोहम्मद यूसुफ जी, थैंक यू सो मच। क्विकली नाम लिखिए। नायला जी, थैंक यू सो मच। अमन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए 3311063 पे। अस्का जी, थैंक यू सो मच। इंतजार जी, थैंक यू सो मच। सदीकी साहब, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रोहन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आयजा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिखिए 3311063 पे। हुसैन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सामी जी, थैंक यू सो मच। मूर्ति जी, थैंक यू सो मच। वेस्ली जी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है इनका, उरूज नवीफ जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। बहुत ही प्यारा नाम है। दीदार जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। फारूकी जी, थैंक यू सो मच। जुन्नैद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है, फिर मत कहना मेरा नाम नहीं बोला। बहरीन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आतिक जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। शिवा, ऑलरेडी मैं आपका नाम बोल चुकी हूँ। नवीद मुनीर जी, थैंक यू सो मच। मुसादिक जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अदील भट्ट जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों का मैंने नाम ले लिया, अब आप थैंक यू लिख सकते हो। थैंक यू के साथ अपना फेवरेट वाला इमोजी भेजना, जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। फुरकान अली जी, आयजा नवी जी, ले लिया आपका नाम यार, बस करो।

0: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਮੈਂ ਗਰੀ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7:45 ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ ਆਪਸੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
0: लोग बहुत सारे लोग हैं वो प्यार के चक्कर में और दोस्ती के चक्कर में सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है ना वो ध्यान नहीं रखते, तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो मतलब इट हैज टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर फीलिंग्स। मुझे पता है हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं बीच में, नहीं यार इट्स ओके फिर क्या हो गया उसने ये कह दिया, इट्स ओके उसने फिर क्या हो गया ये कर दिया, बट आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। फीलिंग्स तो आती रहेंगी, फीलिंग्स के आगे फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट जहां पर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है ना उसको प्रायोरिटाइज करो थोड़ा सा लाइफ में। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है ना, आप प्यार के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा बैठते हो तो फिर आप अपने आप को फेस नहीं कर पाते हो उस टाइम पे, तो वो फीलिंग्स फीलिंग्स के चक्कर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जब फर्क पड़ता भाई अलग लेवल का जो आपका दिमाग है, रात के 2 बजे भी आपको लगेगा अरे यार मैंने धज्जियां उड़वा ली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, सो थोड़ा सा ध्यान रखिए यार। रोकना भी नहीं है खुद को यार। 7:52 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। छाप तिलक वाला गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, गिनी वेज सनी ट्यू से।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas.
1: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
0: Doctor On Air. Doctor On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
2: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
0: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi everyone, I'm Arman Malik. 106.3 FM Radio Olive. Jio Bindas.

0: हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: और तू ही मेरा भी काउंट मत करना क्योंकि कर नहीं पाओगे यार। लेकिन अगर आपके पास टाइम है चलो खेलते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: एक चुटकी सॉन्ग सुनाने वाली हूँ तो बताओ ये कौन सा गाना है। व्यू हो गया तो 100 किलो कहाँ आएगा यार। चलो क्विकली बताओ ये कौन सा गाना है। बहुत इजी है यार। सो लिखना नहीं है प्लीज, वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है। हे सिमरन अपना नाम बताइए एकदम वीकेंड वाली एनर्जी के साथ, और गाना गा के बताना चाहते हैं गा के बता दीजिए, बोल के बताना चाहते हैं तो बोल के बता दीजिए। रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए एक बार, मैं वापस से प्ले कर रही हूँ। अगर आपके दिमाग पे आपको जोर लगाना तो 3-4 बार रिकॉर्ड करके सुन लीजिएगा। चलो बताओ 3311063 पर दिलेर में दीपा जी ऑन योर वे
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के वी लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

हाँ जी, ये हायरे हायरे काउंट करने की कोशिश तो नहीं की ना आपने? मैं क्या चीज सुनियो कि हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तोड़े नाल।

0: खेल रहे हैं की
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: एक चुटकी सॉन्ग में, एक चुटकी भर सॉन्ग सुनाया था आपको। और आप लोगों के जवाब चलिए सुनते हैं।
3: मूवी का नाम है कहो ना प्यार है।
0: ओके
3: कहो ना प्यार है।
0: यार आपकी छोटी सी बेबी जो पीछे बोली, यार आप दोनों का नाम बता देना, कितना मजा आता।
4: हाय सिमरन, दिस इज मुसर्रत।
0: हां जी।
4: और ये गाना है

0: प्यार है।
1: थैंक यू सो मच मुसरत जी।
2: हेलो, गुड इवनिंग सिमरन।
1: वेरी गुड इवनिंग
2: साल खान फ्रॉम पाकिस्तान।
1: हाँ जी,
2: ये जो अभी आपने ट्यून सुनाया कहोना प्यार है मूवी से है।
1: ओके,
2: और टाइटल सॉन्ग है, लिरिक्स

0: हैं।
1: वाह जी वाह, क्या बात है। बधाइयां मिठाइयां दे बहुत सारे पटाखे। आप लोगों ने बवाल काट दिया यार, मजा आ गया। सबने एकदम जो है वो राइट आंसर दिया है। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गोल्ड के जरिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

मैं मूव कर रही हूँ यार, निकल रही हूँ, वीकेंड सेलिब्रेट करने का टाइम आ चुका है। यस, वीकेंड एक सेलिब्रेशन है यार। इसी तरह से जिंदगी को जो आप सजाते रहोगे ना, मजे आते रहेंगे। मैं क्या चीज सुनियो कि दादी की हालचाल, सत श्री अकाल।

करिए। चलिए अब मेरा यहाँ से गलती माने का टाइम जो है वो आ चुका है और आपसे होती है सैटरडे शाम को 5 बजे फिर से मुलाकात। टिल देन खाते मित्रों वाइज करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

0: fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे, आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to